0: back-to-back love songs with Nilupol. Back-to-back love songs. Espiagan, Matona, Oyan Nalalata. आदरण सिपकाना
1: मेरे मोहल्ले में चांद जो आया है ईद जलाया है तू ही तो नहीं
0: मंगासाई हे नौलंकटा मुनट वेटेना ओय केरेले एकिन एकाइन करना दीप्तिमत तो यस्तिहा बलागेन मगे कन कम सुरवलिं ओय हित निवेन वचन मुमुनन्ना ආදරය විතරක්ම පිරුණු ඔයාට තව තවත් ලංවෙන්න.